0: उजालो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साउंड चेक सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
1: अहिले बिहानको 8 बज्यो
3: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
1: राष्ट्रको शान किसान
3: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: 사요 하주를 솔루 FM 솔루 FM 101.2 메가헤르츠 우주한 바비쉐코 라기 한도 아비안
1: 상인체 솔루 FM 스튜디오 타임
2: 9
3: बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: र 98 63 68 64 18
1: वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्डा नगरपालिका 5 सल्लेरी सोलुखुम्बु
2: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देखि 30 मिटर भित्र
3: वन जंगल को छोड़ना घर आंगन

आज पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालू बैरा हाथी चित्त न पसे पछी।

0: गोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
2: Wherever you are, stay connected.

0: बन्धु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्द नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु
1: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले बेलुकीको 6 बज्यो
2: यो समय किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
1: राष्ट्रको शान किसान
2: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Studio time. It's
0: 7 p.m. Start for start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: 최강시의 소리와 사랑 스튜디오 타임.
1: It's 8pm. आपको 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

0: लोग मरेंगे
1: क्या? ये तो रोगते ही रोगत वो चामो तो किस्त ये ना नहीं पाक दिना
0: तेरी क्या कुछ तो जिब्रा क्रॉस बाटो बाटो काट दो परे क्रॉस दिन बाटो वो बाटो काट को
2: जेब्रा क्रॉस में अनिवार्य रूप में सवारी साधन रोकौं र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिऊं।
3: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं। बालबालिकालाई सड़क नियम सिकाऊं र सुरक्षित स्थानमा हिड्न प्रेरित गरौं।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।